उधयंत बिडाऊ तेहे ने मीनी कारे ए न ओकना अरे दाई न सरी ओकना शल दाई न सीम तिमिरना धीम दाई था आति दाते ना हेनेन उन अमसे एम बली भोई दिया ने अदे तू न एन एन सिरे कायो न दीदा ने यत तो तरबे आई अरे तोन ककर बी नहीं दिया हो हदीदा ने यत तो तरबे आई तोकना ने अदो ना ना तो तिंदिये इन यर अव्वल यके न ए विन्नो नाथ सोई शंबीबो ना नई शंबीबे तिंदिये मिशु फिदगे दन्ने एक फिदागे मिशु ब्याके हदुब दाएन हदुब याकेन तो माक तुआ तो दाई तुआ एप्तिक के अकन्ना फरिक एप्तिक एफिप के अकन्ना उन मिशु फिदाग अहित हेने न कसाके बेत तो नाती दा इन यर कक दाई ब्रिब्बी नहीं दाई था आतिब कक ने दे मियादी इंबरियो इंबलिब दिया उकनने है उत्तून थोय हदी दा हेने ने अदेत उन सिरिक इत्वरी आई अद आरोर इकत्योब बेन उदोर तरबियात बिड़िगिल नाती दा की इशन है दाई तुमारी हुआ दाई था आती हुआ ओत उई बाकाय सेना सोई तुआ आन अरे तुंदे ओरो ओनु कडिस्तिय तोन अमालो हवुला दीते ना हुआ उंबा तो बाकाय तरबियात बिड़िगिल दाई की इशन है और ना दोरे तरबियात दा इस्तने और फाते की थीरा रेरी है ओदोर अदिमलाम से एदनो बेन ओदोर अदिमलाम सी विकत्यो बेन ओदोर गुदान होई शंबी हो ना नहीं शंबी मुन तिंदे उन उन्हें सिर्फ तो न तुर ही तो दबाई रही तुम बतो सकीने अदिमलाम से था दी तिकतिये तो राव तिकतिये बतो हरी सकीने को बेन ओदोर तो न तो दाई रिश्ते तो न हुआ तो न तो दाई तिसोकीने तो न हुआ इन वी नहीं विंग काप शिवाय कतिये तो रावदा हुआ ए भी है तो रावदा ती वदामी नहीं है ओदोर बेन ओदोर तो मिद्रस तो रावदा तूकना तो रावदा ती बहन तुम अल्ले में कतिये एक मुदर्रिसा एक अजीने बरो बिन्तोई तो न तो दाई त्रिसेन ए भले दाई भ्रिसेन आन थदी तो दाई त्रिसेन आन अरे तो न तो बरो तिसाइस तो तोरा वद बनु बको बक बक ए अदना उगावी बेनियो को बरो बेन ओदोर उगावी दाई इदाई दबाई हदी तिनी आया इदाई दबाई सकतिनी आया तो न तो दाई त्रिसेनी अरे शिवैया इमुई नहीं विंका बकित तुम द्रस ए भी ओदोर बेन ओदोर दाई तो तरबियाई तो दाई बरो करी वे तोक तोन भले दाई दबाई तिंदी आया तो न तो दाई दबाई सकते नहीं आया अरे गलत अगले ते रितनियो दीजे सोई औरो नहीं तुम गलत था तुम दाई तो दिए थे तो दाई तो तो माक तो रिश्ते नहीं ना ना तो तिंदी एक हमसे और हल गया कि एक मल्ल लहित लहित बित का गुदा शाना हो के तरियो दाई बुकनो कोई दिया तिंदी आया इंदा सीले ला तिंदी आया आन इदाई सका तिंदी आया आन ओधई बा मोटे अतिंदी आया युवन काय खमोसा अतिंदी आया इधर दिस काय कनकुम अनाया अतिंदी आया तोंदे हुआ उम्बाबा हुआ दाए बुरी तोना तिसोकीन उन्दा हिने हो अधिदना ने तोना तो तरबी आया रे नाती भदिदना तो तरबी आया ना गुआ दी तो तेदने के बेदोर नी दे तोकना तोकना तू यार ए वाविन विन एदने बोदोर अरे बेन ओदोर तोना तो दाई त्रिस्ये तोना हुआ तोना तो माक थागे लतिंदिये तोना हुआ था दी तो दाई दबाए हदी तिनी आया भले दाई दबाए हदी तिनी आया दे तोक दाए हुए रतिंदी आया बाबोक दाए हुए रतिंदी आया उन कायो खमोई सा तिंदी आया उदिस कायो क नकुमाना आया तिंदी आया अरे ते क्वाता एहने ते को दाए बोरिये तोना रिस्तिनी आया इसाना दाए बोरिये तोना रिस्तिनी आया तुम इधर साथ हुआ ते तेन ते दाई दाए सकिये तोना कस्तो तिसोकीन आया तुम्हारे तमा इंदिये बोदोर रिस्तिनी आया एक हंकाई शुगुड़ आया हरी शुगुड़ आतिंदी आया तुम्हारे तुदाई तम आतिंदी आया बिस्मिल्लाह दी आतिंदी आया तो तोना कस्तो बरो अर्री उतुआ बरो दाएब दन्नी तुआ बरो रंशी तुआ कस्तो रिस्तिनी आया हेनिन तू न तुनि सरीवे तु दाएब यार बायाकीन दाएब बर बीमी मियादी मतो कस्तो हो हदी नये ना तू तू न अरे बिड्डिगिन नहरवाना कित शलक न शलक मीना अंते है तू तरबी आयदने शलक मीना नू उन ऊगव उगावी बेहाओ और नत का मकर का गवियो दावरी बेदना मकर का तो तुंदिवातियो इत इश्तबीब तू न उन्हें सिरे किस बोबी एक माशाल्लाह और दाए और बेदना हमसे उन ओमीनी और रुक बर्रा बिठवार गए हदु सके और बाबा के हाय ना नियत अरे वे और दाए सके रे नो या बोन माना देवी और बाबा हो तुंदे हुए मनाए देवी है एर्न तो तू न कस्तू तुशाबू तक का ओनो तो उमीनो इश्त तन्ने एदना तू न तक का उमीनो तन्ने तुदा एदने
yani nun natka tayato hoya kabe katieto hoy godia kabe katieto mbato tokna tanne edna ko orok baruk da ebrebeti tenati dai soi soeti tenati dai tisokino benodor umor mashallah dai mina rabbi ma oro dai tati be en tunati dai erek dai tarbiya rabbi ana idai sokinna dai ebdina idai hadisana tona to dai saksana kasto tikten na to dai to to mak to barak eknak tikten namse embali bude erne kitena betonati da ere tokna tarwiati nashata ka bakena dai ka taati hoy dai ana henen dai na ne sari okna di ma dai dati ne tareni betonati da embali ne ya dokna unda thayati dai jae shalla date na utona tone ne tokna gono koi dina are we dai ka thoyre tene gare sakana hi no hon henen tune sari we tukna dai na ne sari okna are di ma shalla yarakna delha bekatin barak delha tikatina dai thayati date na kassana nare dai thaati bdayati shalla idai nae wa idai nae thaati wa chi di ma shalla ne marari unda utunati unani tu tarbiyai ti are naati embali ne adokna are ware thalaga ne bari utunati daib datine dareni ene nistera okna neat.